आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 10वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 1 अगस्त सन 2026, 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो

0: संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं समूह स्वर में मातृवंदना।

उन हिमालय से तो बनो रहे ऊंचा करे लला, समुद्र पखारे पाओ कमे नहीं को कब उठा, समुद्र पखारे

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृवंदना
1: अर्चना कार्यक्रम में आइए सुनते हैं
0: अनूप चरोटा से ये भक्ति रचना।

सुधाकर की भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में। अर्चना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं साधना सरगम से डॉक्टर अजय प्रसून की ये भक्ति रचना। संगीत उत्तम।

साधना सरगम और साथियों की आवाजों में डॉक्टर अजय प्रसून की भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे। संगीत उत्तम चटर्जी का था। इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको जानकारी देते हैं आज दिन भर के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में यानी 6:30 पर होगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम होगा 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से 6:55 से। सुबह 7 होगा रोजाना का क्रम सुबह सुबह। 7:05 पर कृषि संकेत। प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से होंगे 7:10 से। 7:20 पर होंगे आपकी फरमाइश के फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत।

गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा संगीत सरिता 7:45 पर। 8 बजे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा समाचार प्रभात। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 8:15 पर। 8:30 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 9 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। भोपाल से जिले की चिट्ठी होगी सुबह 10 बजे से। 10:05 पर चिट्ठी से लोकगीत। महिलाओं का विशेष कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी 10:30 से। 11 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार 2:10 पर भोपाल केंद्र से और दिल्ली से होंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। 2:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। इस घंटे की सुर्खियां। ये कार्यक्रम होगा भोपाल केंद्र से 5 बजे। 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।

सदाबहार गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम होगा शाम 6:45 से। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से शाम 7:00 और प्रादेशिक समाचार 7:10 पर भोपाल केंद्र से। इस सप्ताह संसद में यह कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:00 से। चित्रपट संगीत 8:15 पर, 8:30 पर संगीत सरिता, समाचार संध्या 8:45 पर और रात्रि 9:00 से मन चाहे गीत। 9:30 से होंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। रात्रि 11:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से ही 11:05 पर, और 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा। तो ये थी जानकारी आज दिन भर के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

एफएम बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:40 हो चुके हैं। पेश हैं भूले बिसरे गीत।

0: मुकेश, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ों में नौशाद के संगीत में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार शकील बदायूनी थे, फिल्म का नाम था मेला।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: भोले बिसरे गीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गीता रॉय और साथियों की आवाजों में करवट फिल्म का ये गाना। गीतकार हैं सैफुद्दीन सोज, संगीतकार हैं हंसराज पहल।

भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पर्दा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। गीत स्वामी रामानंद सरस्वती का है।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सुलोचना कदम की आवाज में एहसान रिजवी का लिखा ये गीत। संगीत पंडित रमाकांत का है, फिल्म का नाम है बाबूजी।

सुलोचना कदम की आवाज में एहसान रिजवी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत पंडित रमाकांत का था, फिल्म का नाम था बाबूजी। इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में।

अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM पेंट 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है रोजाना का क्रम सुबह सुबह। ये कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओ, हम अक्सर पढ़ते सुनते देखते हैं कि कुछ लोग ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए, उनकी मदद की। सड़क पर कोई दुर्घटना घटी और कुछ लोग आकर चुपचाप उनकी भरसक सहायता करके हमारी नज़रों से ओझल हो गए। या किसी

0: पशु पक्षी या घायल प्राणी को बचाने की मुहिम में कोई व्यक्ति या समूह अपने बहुमूल्य प्रयासों के साथ साथ अपना अमूल्य समय खर्च कर रहा है। कोई पानी की बर्बादी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है तो किसी को पेड़ पौधों और जंगलों के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास करते हुए देखा जा सकता है। इस तरह के उदाहरण पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, समाज सेवा, प्राणी मात्र की सेवा के साथ साथ हमारे समाज के कई और घटकों से जुड़े हुए होते हैं, जिनकी बुनियाद पर हमारा वर्तमान टिका हुआ है, हमारा भविष्य भी। हमारे परिवारों के, समाज के, बुजुर्गों के संरक्षण से जुड़े कई कार्य भी कुछ श्रेष्ठी जनों द्वारा किए जाते हैं, जो कि हमारे गुजरे हुए कल के प्रतीक हैं। ऐसे तमाम मौकों पर हमारा मन द्रवित होता है, मन में अजब सा सुकून का अनुभव हमें होता है ऐसे श्रेष्ठ लोगों की वजह से। श्रोताओं, क्या हमने कभी सोचा है कि ये श्रेष्ठ लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, उन्हें ऐसा करते हुए क्या मिलता है? इन प्रश्नों के जवाब हम और हम में से उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाएगा जिन्होंने इस तरह का कोई काम कभी किया है। श्रोताओं, हमारे समाज में जितने तरह के इंसान रहते हैं, प्राणी रहते हैं, लेकिन कहा गया है कि मानव उन सब में श्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए है कि उसमें संवेदनाओं को न केवल महसूस करने की क्षमता होती है, बल्कि वो उसे व्यक्त कर सकता है और आवश्यकता अनुसार दूसरों के हितों में कार्य करने के लिए उसके पास बुद्धि भी होती है। इस दिशा में सोचने वाले मानव ही कालांतर में महामानव का दर्जा पाकर श्रेष्ठी वर्ग में स्थान पाते हैं। श्रोताओं, एक बात और, हम सभी सारी जिंदगी कोशिश करते हैं कि हमें खास का दर्जा हासिल हो। उसके लिए सारी कवायद करने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इस सब में कहीं ना कहीं संवेदनाओं और विचार क्षमता तक हमारी पहुंच ढीली पड़ जाती है, जिसकी डोर तो हमें थामे ही रखना पड़ेगा। श्रेष्ठता अपने समग्र रूप में ही पूर्णता पाती है। तो आइए आज ही से थोड़े श्रेष्ठ प्रयास करते हैं मानव में भी श्रेष्ठता के लिए। अभी आप सुन रहे थे रोजाना का क्रम सुबह सुबह, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत।
1: किसान भाइयों, अपने चूंकि सागर जिले में सोयाबीन उड़द मुख्य फसल है, तो सभी फसलें सोयाबीन उड़द की जैसे 30 दिन की है, कोई 35 दिन की है, कोई 40, अधिकतम 45 दिन की फसल है। तो जो जल्दी पकने वाली वैरायटी है, 90 दिन वाली जैसे 95-60 है, JS 20-34 है, तो इनमें हल्का हल्का फूल आने लगा है। और जो 105-110 दिन वाली वैरायटी जैसे JS 20-21-17 है ना, RBS की वैरायटियाँ हैं, NRC की वैरायटियाँ हैं, जो वो 105-110 दिन की हैं, जैसे NRC 138 है, तो इनमें चूंकि नीरा नियंत्रण हो चुका है, तो अभी देखने में आ रहा है किसान भाई DAP यूरिया ऐसी डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता भी फसल को कम मिलेगी और खरपतवार बढ़ने की शंका रहेगी। तो किसान भाई ऊपर से ना देके आप इनका जैसे घुलनशील उर्वरक आते हैं 18-18 है, 19-19 है, 28-28-0 है, इनका आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें 200 लीटर पानी में, या फिर आप सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक है, कॉपर है, सल्फर है, इनका मिक्सचर आ रहा है बाजार, मैंगनीज है, बोरॉन है, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो DAP, 2.5 किलो पोटास और 500 ग्राम जिंक 33% वाली इनको पानी में घोल लें 100 लीटर पानी में और इनका 1 एकड़ में स्प्रे करें, तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में चमक भी आएगी। और अभी जो फूल की दवाई का जो अभी चलन आने वाला है, तो फूल की कोई दवाई नहीं होती है, फूल देखो पौधे में प्राकृतिक रूप से फ्लोरीजन हार्मोन से बनता है, तो ये तो क्या काम करते हैं कि सिर्फ पौधे में चमक आएगी, थोड़ी बहुत हाइट बढ़ेगी, रंग गहरा हो जाएगा, आप सोचेंगे बढ़िया काम हो गया, तो चूंकि फूल की अवस्था चल रही तो फूल तो आना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो किसान भाई फूल की दवाई ना लेके, चूंकि क्या है ये दवाइयाँ 500 से लेके 5000 और 10000 रुपये पर लीटर तक आ रही हैं, इसमें आपका आर्थिक खर्चा भी बढ़ेगा, और आप अगर NPK 19-19-18-18 या जो मैंने बताया यूरिया DAP 2.5 किलो और पोटास और जिंक, इनमें आपका खर्चा भी कम आएगा और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी, और प्लस कीट नियंत्रण जो सफेद मच्छर फैलता है उनसे भी आपको निजात मिलेगा। तो इनका आप हर 15 दिन या 20 दिन अपनी सुविधा अनुसार फसल की अवस्था को देखते हुए, जैसे ही फूल आ जाएं उस समय आप 100 ग्राम बोरान प्रति एकड़ के हिसाब से और 100 ग्राम मोलिब्डेनम प्रति एकड़ के हिसाब से इनको भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे परागकण अच्छे बनेंगे, परागकण अच्छे बनेंगे तो फलियाँ अच्छी बनेंगी और दाने भी अच्छे आएंगे। और पोटास का क्या होता है, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, दाने की चमक बढ़ाता है और बोल्डनेस लाता है, तो पौधा स्वस्थ रहेगा तो बीमारियां भी कम आएंगी। हाँ, जिन क्षेत्रों में कई कई जगह एरियल ब्लाइट की समस्या आने लगी है, जैसे 95-60 वेराइटी है, तो आप प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल जो फूलनाशक है वो 100 ml या 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर स्प्रे करें, तो जिससे आपके फूल जनित बीमारियाँ हैं उनसे निजात मिलेगा। पोषक तत्व प्रबंधन में फूल की दवाई पर बिल्कुल ना जाएँ, घुलनशील उर्वरक इनका प्रयोग करें, सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें, और आप चाहें तो फलियां बनते समय जिब्रेलिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर किसान भाई चाहें तो। उससे क्या होता है, फलियों की सेटिंग और फलियों का दाना जो होता है वो थोड़ा अच्छा बनता है। गुलाब पानी के साथ घोल के, या कई लोग ड्रिप जो सब्जी वाले किसान हैं, है ना, तो वो कीटनाशक भी साथ में दे सकते हैं, प्लस 19-19 चूंकि क्या है पानी में घुलनशील है तो आसानी से घुल भी जाता है और पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है। अच्छा, जिंक इनकी विशेष कमी पाई गई है, पूरे सागर जिले की बात कर रहा हूँ, तो किसान भाई पोटास तो अवश्य दें, चूंकि अपने यहाँ DAP का चलन है तो किसान भाई DAP तो डाल देते हैं, पोटास डालते नहीं है, इससे क्या होता है दाना भी छोटा आता है, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, बीमारियां लगने लगी हैं, है ना, तो पोटास जरूर डालें, बोरान और मोलिब्डेनम इनका भी प्रयोग करें, इनसे क्या होता है फूल अच्छे आते हैं और फलियां अच्छी आती हैं। पोषक तत्व करें, फूल की दवाई पे बिल्कुल ना जाएं, ना DAP यूरिया डालें, हाँ घोल के जरूर डालें और या घुलनशील उर्वरक के माध्यम से डालें, और सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक है, मोलिब्डेनम है, बोरान है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, अच्छी होगी। हाँ, चूंकि मौसम इस साल बड़ा अनुकूल है फसलों के हिसाब से, तो अच्छी बढ़वार भी हो रही है और अभी कोई रोग दोग की विशेष समस्या नहीं है। आप निरंतर निरीक्षण करें, आप ऐसा नहीं कि खेत पे गए चारों तरफ चक्कर लगाया और आ गए, खेत में घुसे हैं, कचड़ा है तो कचड़ा पटाएं, पौधों का निरीक्षण करें, पौधे को उखाड़ के देखें कोई फफूंद तो नहीं लग रही है, फाड़ के देखें कोई इल्ली तो नहीं लग रही है, पत्तों को देखें आगे पीछे सूख तो नहीं गए हैं, कोई कीड़े ने अंडा तो नहीं दिया है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। चूंकि
0: सोयाबीन और उड़द में पोषक तत्व प्रबंधन इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, विशेषज्ञ थे आशीष पटेल। FM बैंड 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:10 होने को है, प्रादेशिक समाचार होंगे भोपाल केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर वीडियो संदेश जारी कर कहा, गुमराह बच्चों को सजा नहीं, माफी और सही राह दिखाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत के साथ शहरवासियों को देंगे विकास कार्यों की सौगात। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में रचा इतिहास, पहली बार जीते 2 स्वर्ण पदक, मुक्केबाजी में 10 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। और इंदौर उज्जैन संभाग सहित पश्चिमी जिलों में पिछले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जंतर मंतर पर हुई घटना पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना में उन्हें और उनके दिवंगत माता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, लेकिन वे संबंधित युवाओं को सजा दिलाने के बजाय उन्हें सही राह दिखाना चाहते हैं।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और विशाखापट्टनम में सेमी कंडक्टर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद स्मारक विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शहरवासियों को विकास, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी कई बड़ी सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव डुमना नेचर पार्क में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे और उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावाकी पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री घंटाघर स्थित गीता भवन में 362 करोड़ रुपए की अमृत सीवेज परियोजना और 3 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसका फायदा 89,000 घरों को मिलेगा। इसके अलावा गुरंदी में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बने नए मत्स्य बाजार का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल झाबुआ जिले के थांदला में स्वसहायता समूहों के क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने स्वसहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया, जिसमें झाबुआ जिले के 215 समूहों के लिए 10.5 करोड़ रुपए का ऋण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनें अब हर महीने 10,000 रुपए की आमदनी कमा रही हैं और प्रदेश में 196 दीदी कैफे चलाए जा रहे हैं। उन्होंने झाबुआ जिले को 174 करोड़ रुपए के 29 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 109 करोड़ रुपए के 28 कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज झाबुआ के अंदर भूमि पूजन हुआ, जोरदार ताली बजाए अपने नए मेडिकल कॉलेज के लिए। धार झाबुआ में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलेगा, रोजगार के नए नए कारखाने खुलेंगे। अब तो थांदला से होकर रेल भी जाने वाली है। नए दौर का नया समय आया। आदिवासी क्षेत्र में पट्टों के बजाय रजिस्ट्री करा करके आपके जीवन में बड़ी मदद करने का काम हमारी सरकार से कर रहे हैं।
0: प्रदेश की सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मूंग और उड़द खरीदी के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्री सारंग ने कल मंत्रालय में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं समय पर रहें और उड़द खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान में जनभागीदारी से 5 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। 15 दिन तक चले इस अभियान को 60 से ज्यादा जानी मानी हस्तियों का साथ मिला। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 1,75,000 से ज्यादा नागरिकों को नशा मुक्ति की ई शपथ दिलाई और 8,500 लोगों की मानव श्रृंखला बनाई। बड़वानी पुलिस ने 16,700 ड्राइंग शीट्स पर विद्यार्थियों से नशा मुक्ति के चित्र और स्लोगन बनवाए। बुरहानपुर के 113 स्कूलों के 32,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्ति का संदेश दिया। वहीं बालाघाट में 1204 स्कूलों के करीब 1,25,000 विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी बने। वहीं यामिनी मौर्य ने रजत पदक हासिल किया। मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया और लवलीना बोरगोहेन सहित 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत और रश्वीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकथलॉन ने कांस्य पदक जीतकर ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 128 पदकों के साथ पहले और भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 के दूसरे भाग का आयोजन रविवार यानी 2 अगस्त को ऑफलाइन तरीके से किया जाएगा। ये परीक्षा 6 विषयों के लिए 2 सत्रों में इंदौर और भोपाल संभाग के केंद्रों पर होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। आयोग ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर इस बार नई त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक जांच और मेटल डिटेक्टर से तलाशी शामिल है। प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार और पद्मश्री सम्मानित कैलाश चंद्र पंत का कल हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 90 साल के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। कल उन्होंने भोपाल में अपने निवास पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में जुलाई में 2 लंबे ब्रेक के बावजूद बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन जून में कम बारिश की वजह से आंकड़ा 13% कम है। इस वजह से 55 में से 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अगस्त में कोटा पूरा हो सकता है। इंदौर उज्जैन संभाग सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने 2 आदतन अपराधियों को जिले तथा उसके सीमावर्ती जिलों की सीमा से 6 माह के लिए जिला बदर किया है। खंडवा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान आगामी 7 अगस्त से शुरू होगा। इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार अधिकारी गांवों और नगरीय क्षेत्रों में पहुंचकर नागरिकों से संवाद करेंगे। कटनी में कल शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने पिपलिया मंडी ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था देखी और पौधरोपण किया। आगरमालवा जिले के ग्राम आवर में संचालित स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित मिट्टी के खिलौने और अन्य हस्तनिर्मित उत्पादों का कलेक्टर ने अवलोकन किया। सतना पुलिस द्वारा जिले भर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे भोपाल केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

0: काजल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। गीत साहिर का था, संगीत रवि का था। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी आप सभी ने पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम निप्पी और अफजल महलिक, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना,
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
2: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
3: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
1: बात बन जाए।
3: 287 मेरी चाय।
4: मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत नीरज का है, संगीत एसडी परमन का। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी की। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से सुनना चाहते हैं विजय महोबिया, कविता विशाल, सोनू, मोनू, रानू, देवराज, सपना, शिवी, सलोनी, पेंटर बाबू, अनिल सोनी और उनका पूरा परिवार। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू। महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुचला, ज्योति और रियांश ठाकुर। दतरेंगी फटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और उनका परिवार। ग्राम बन्ने बुजुर्ग, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा।
5: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मनचाहे गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं रुसबाई फिल्म का गीत, अमित कुमार और सुरेश वाटकर की आवाजों में। गीत इंदिवर का है, संगीत आरटी परमन का। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी की वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से। सुनना चाहते हैं विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, शौर्या श्रेयस अंकिता और अनिकेत चौहान, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश मैंडी सौरभ सायना और निवान शर्मा, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, पोतरा गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस टिकेस्ट्रो, ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। आप सभी की फरमाइश पर अमित कुमार और सुरेश वाटकर की आवाज़ों में रुसवाई फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मेला फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत आरटी परमन का। इस गीत की फरमाइश प्राप्त हुई है आप सभी की कलानौर से। सुनना चाहते हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा पोपो और श्राप्या रामटेके। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गफ्फानकर राही, सरिता गफ्फानकर, प्रणीता सिद्धांत, प्रिंस एकांश गफ्फानकर और उनका परिवार। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गफ्फानकर, श्वेता सुमित गफ्फानकर, कुमारी ध्वनि गफ्फानकर, परी और उनका पूरा परिवार। आप सभी की फरमाइश पर मेला फिल्म का ये गाना।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मेला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत मजरू का था, संगीत आर डी बर्मन का। इसी गीत की फरमाइश प्राप्त हुई थी गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दातार सिंह शेखावत संगीता कवर, तुषार सिंह रिंकी और उनका परिवार। इसी गीत की फरमाइश प्राप्त हुई थी सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान ने इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी। मेला फिल्म के इसी गीत के साथ मनचाहे गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे उन्हीं का लिखा ये गैर फिल्मी गीत।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
0: संगीत सरिता कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं पंडित अजय पोहनकर और आरती अंकलीकर की आवाजों में पंडित अजय पोहनकर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत।

पंडित अजय पोहनकर और आरती अंकलीकर की आवाज़ों में पंडित अजय पोहनकर का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत अभिजीत पोहनकर का था। इस गैर फिल्मी गीत के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8 बजने को हैं समाचार प्रभात। दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे थोड़ी ही देर

0: www.radiomirchi.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्टैग अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल sec.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। जैगथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया।

0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

0: राधा खरे, आशा तिवारी और उर्मिला पांडे की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये वर्षा गीत।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर।
0: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बलराम सिंह यादव से ये लोक गीत।

बलराम सिंह यादव से भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम लोधी की ये प्रस्तुति।

पुरुषोत्तम लोधी से भी आप सुन रहे थे ये लोक शैलीबद्ध वर्षा गीत। इसके साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत आनंद मिलिंद का था, फिल्म का नाम था लाल दुपट्टा मलमल का।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना,
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं नदीम श्रवण के संगीत में समीर का लिखा गीत। आवाज अलका याग्निक की है, फिल्म का नाम है मझधार।